कंचन नारी में जियो लोभत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

हे मेरे राम ए साडे नीवे करम मंदे पाग मैड़े करम तू सानू बख्श ले मेरे राम ए नीच करम हर मेरे इना कुकर्मा विच पै के असी अवगण ते कठे कर रहे ने साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा हो। मैं कई बार बेनती करिया कर दा आप जद गुरु दरबार आईये ना उदो कोशिश करिया करिए के हाथ बन के बेनती करिया करिए हे प्रमात्मा तू कर कृपा मैं थे एक अवगण छड़ जावा ते इथो एक गुण ले जावा क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना हुण तुसी देख लो बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच उस तो बाद अगे वो एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए आ ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे हुण बैठे उदो पढ़दियां कोशिश करिया करिए मालिक एक सबक रोज दे दे एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदे आ असी उस गुणा नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता एक दिन गुण ही रहणगे अवगुण नाश हो जाणगे क्योंकि गुरु नानक दा डर ऐसा है नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ए ते निर्गुणा नूं गुणवान बना दिंदे हन ते इस डर ते आके भी असी अवगुण नहीं छड्डदे ध्यान देना अवगुण नहीं छड्डदे बल्कि असी आउणा छड्ड दिंदे। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया ते तीर्थ ते बैठिया मुखी पंडित ने आखिया हे भाई तेरे इत्थे बुजुर्ग भी आया करदे सन तू भी आए ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगुण छड़ जांदे सन कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन प्रण करके जाया करदे सन ते तू भी कुछ प्रण कर जा तू भी कुछ त्याग दे तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसी हुक्म करो की छड्डा कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकता है। जिस वेले आज उन्हां ने ओ अवगणा दा ना लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसी छड़न लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड़ सकदा हां ए हो सकदा मैं इत्थे आउणा ही छड़िया मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन ओ अवगुण नहीं त्याग दे आउणा छड़ दिंदे ने कई कई बार औखे हो जाते ने कि सच की गल सुनीए क्यों कौन हुंदा कोई सानू सच कहण वाला आपां जिवें चल रहे हां ठीक है नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण दी ते गुरु सानू गुण देवेगा ते ऐसा नहीं ना करांगे। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे इसलिए साहब कहिंदे ने मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया हे मेरे मालिक तू गुणवान है तेरे अंदर गुण हन ते तू साडे ते कर कृपा।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनु अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जिहा है ते असी किहो जिहे हां।

करेंगे हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, नीको ठाकर देसा सामने नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे, जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल दे

तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधव असी कहो जाए ते आप कहो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है किन्ना फखर है ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए गोबिंद हम ऐसे अपराधी गोबिंद हम

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी के हो जाए अपराधी हां, साडे अंदर किन्ने को औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। हजूर बख्शिश करदे हन कि यह गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तेन लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा बिन

तुरबिन दूजा और न कोई तेरा खेल अखाड़ा जियो तुरबिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

मैं दूजी नहीं थार जिस पे हम जाएंगे ता तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ये लाएंगे।

के गुरु सूरे हलत पलते प्रभाव सवाए कार्य होए तले पूरे हर नाम जपत सुख सहजे हर नाम जपत सुख सहजे मजन होत साधु तूरे आवण जान रेत पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिजनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ सब सुपाई हर गुण गाओ सब सुपाई मन पिंडे

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती, जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु, यह संसार एक समुंदर है। समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर यह संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालिक,

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवां। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

आपस विच काम पे है। एक मित्र ने किया ले मित्रा मेरा काम करना ही कह लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया भूल गया ना कीता। एक दिन मुलाकात

विश्वास काती अकृत कन में कोई ना रखन। विश्वास काती अकृत कन, विश्वास काती किसनु कहंदे ने, जेड़ा किसे नु प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी। गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उन्हां नूं रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नूं पवित्र मन्या जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है, ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी, ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा, जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन है। गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता, आपने गुरु धारण नहीं कीता। कहंदे हन निगुरे दा नाउं बुरा, कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नूं पुजे, रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगो जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे। उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहुंदे हो, पर मैं ते आज दास बन के आया। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगता नू छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लेके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकदा है? जुलाही ने भी किया कौन हो सकदा है ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है। इतनी सेवा करन वाला, करड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तख्त ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणिया दे मान हो, निताणिया दे तान हो, न्योटिया दी ओट, निगत्या दी गत, पत्या दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता, इस कारण करके के आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे के एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु

रुपये दिते सन के बच्चे कोई खरा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। वी रुपये लेके चल पे जाना ते सी चूड़ काने, मगर रस्ते दे विच ही एक साधु ते संतां दी मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरां तों अनेकां दिनां तों परमेश्वर दी आस विच बैठे सन।

करेगा ते तां ही छकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी निगाह पै गई। बालपन विच ही बाबा नानक संतां दी मंडली विच जा बैठे, सिमरन ते बैठ गए, भजन सिमरन की

दास जी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की होई। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे अमृतसर विच जोत जगावे। कहंदे ने सोडी पातशाह रामदास जिन्हां नूं सतगुरु जानिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हां ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नूं अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समें विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नूं जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा कि जाओ भाई हुण इत्थे बड़ी सेवा हो गई गोइंदवाल, हुण जा करके दरबार साहब अमृतसर दे विच जा करके नाम भी जपो ते फिर ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके। हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे

प्यार नाल, प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते पाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर

सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके बैकुंठ नु चले गए।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना, ओ उठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीकन लगा सतवच ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता। पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी, चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारे ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया है, तो वह श्राप देने वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नूं, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया और चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है भगत अमरीक नु मारन वास्ते वधी सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रेखी एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने चक्र सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे पर जान सब नू प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण पढ़ना जियो लै कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पढ़ना जियो लै रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नू तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनू फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नू, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं। ता दुर्भाषा ऋषि शिव लोक नू चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्भाषा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नू गया। ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्भाषा ऋषि बैकुंठ नू चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने इंद्र लोक शिव लोक तज ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इसनू आसरा जदू ना मिलिया दुखी हो गया दुर्भाषा ऋषि।

ओ परमेश्वर, किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाउ निधि ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अजूना टरियो, अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी, त्रू भगत ते कृपा की थी, भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नू के सोने केसा वाला परमेश्वर, कि वह जरा परमेश्वर है वह भगतों के वास है। इस वास्ते तो अज तक वह बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया, राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी, ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो, दुनिया दे काम कार करदिया अते अपने जीवन नू

अलग अलग हन पर जोत ओहा जुगत साई सह आया फेर पलटी। पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा ते जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु कोई होर।

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग

पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है। मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी ओनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओह सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहंदी है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे ने।

काजी बकबो हस्ती तोर। जेड़ा महावत हाथी ते बैठा सी, काजी ओनू कह रहा, हे महावत तू अपनी सही मेहनत ड्यूटी नहीं कर रहा, ते एदी सजा तेनू भुगतनी पैगी।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी की, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल किया, कोई गलत काम ही नहीं किया, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले

वड्डे साहब दे कोल जदों जाइए तां उहदे अगे भेटा की रखिए। अज संसार दे पदार्थां विचों उहदे अगे कुछ पदार्थ धन दौलत कुछ रख दिता तां की रखिया। उहदियां दातां विचों जे कुछ थोड़ी जी दात थोड़ी जी वस्त उहदे अगे रख दित्ती तां क्या ओ प्रसन्न होवेगा। ओ सच्चे साहब दे हजूरी जदों जाइए तां भेटा की रखिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सिद्धा ने जदों ए पुछिया फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। साहब जी कहन लगे ए पुछदे हो के उस सच्चे साहब दे हजूर की रखिए तां फेर के अगे रखिए जित दिस फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। साहब जी कहन लगे अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। जे उस मालिक दी हजूरी विच जाओ सच्चे साहब दे कोल जाओ तां भई ओ तां इक सिफत सलाह पसंद करदा है और जो भी उसका गुण गाउंदा है उस गुण गाउन वाले वाल उस परमेश्वर दा मुख हो जांदा है। साथ संगत बोलो श्री क्योंकि ओ साहिब सदा नित नवा है और संसार उदे कोलों दाता लै लै के खा रहा है। इस वास्ते साहिब मेरा नित नवा सच पुराना ना थिए नाम ना मैला होए। सच कदे पुराना नहीं होंदा और परमेश्वर दा नाम कदे मैला नहीं होंदा। साथ सगत बोलो श्री इस वास्ते साहिब मेरा नीत नवा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नित नवी बाणी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन नित नवे दर्शन हैं। इस वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जिथे अकाल पुरख की उस्तत कर रहे हैं सानू जाच सिखा रहे हैं कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी आने वाली पीढ़ी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी उपमा किवें गानी है।

सबे साग कुड़ावे डिठे पल्ले तेंडे लागी। सिख दा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहब, और जो सिख गुरु ग्रंथ साहब दा ओट आसरा त्याग के किसे होर पासे जावेगा, किसे देवी देवते वल, होर किसे दी आसा मन विच रखेगा, कबरां नू जाके पूजेगा, मणियां मसाणा विच जाएगा। आख्या जिवें बछड़ा अपने गऊ अपनी गऊ मां दे थणा नू छड के दूसरी गऊ दे थणा ते जाके जे दुध मंगेगा तां उसनू कदे उत्थों दुध नहीं मिलेगा, लत ही मिलेगी। साथ संगत बोलो श्री भाई गुरदास जी कहंदे हन, इसे तरह जे अपने गुरु दा ओट आसरा छड के जे दूसरे किसे पासे जावेगा तां भाई कदे पूरी नहीं पवेगी तेरी। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे सन, जे सिख दी गुरु ग्रंथ साहब ने पूरी ना पाई तो फिर कोई पा नहीं सकदा। साथ संगत बोलो श्री सिख दा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, सेवा कर ता गुरु ग्रंथ साहब दी, और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब दी सेवा कीती सारी सारी रात नाम जप के गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच खड़ो के बाबा नंद सिंह जी ने नाम जपया ते फिर गुरु ग्रंथ साहब विचों गुरु नानक नूं प्रगट करके दर्शन कीते। साथ सगत बोलो श्री भाई लहणा जी सेवा करके ही गुरु नानक दे कोलों बख्शीशां लै गए, गुरता गति लै गए। गुरु नानक दे घर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उहदी मनोकामना पूरियां होंदी, जे गुरु नानक दे घर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। साथ संगत बोलो श्री भाई लहणा जी निष्कामता दे नाल सेवा करदे दिन रात, फिर ओ दिन आया जदों गुरु नानक ने अपने हिरदे नाल ला के आख्या लैणिया भाई तू लेना है ते असी तेरा देना है, इस वास्ते आज तो अपने अंग ना ला के गुरु नानक ने लेने नू अंगत कर देता, अपनी जोत गुरु अंगत दे हिरदे विच रख दिती ते आख्या हुण तू खंडूर विच जाके संगतां नू नाम जपाओ। गुरु अंगद देव जी खंडूर दी धरती ते बैठे हर वेले यही अरदास करम, सेवी साहिब आपना अवर न जाचो कोई, गुरु नानक जदों दा मैं तेनू वेख्या तेरी सेवा कीती है हुण मेनू अखां विच होर कोई जचदा ही नहीं। सेवी साहिब आपना अवर न जाचो कोई, नानक तांका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। रोज अमृत वेले उठ के साहिब जी उथे संगतां नू दर्शन देंदे हन, नाल कीर्तन नाल जोड़दे हन। एक दिन अमृत वेले दा समा गुरु अंगद दे पातशाह खंडूर दी धरती ते बह के दीवान सजाया, ए शब्द गा रहे सेवी साहिब आपना वरना जाचो कोए, तां पाई बाला गुरु अंगद दे पातशाह दे दर्शन करन आया के मैं वेखां ओ कौन पुरख है जिसने गुरु नानक नूं भी जित लिया है, जिसने गुरु नानक दा हिरदा जित लिया है। जदों पाई बाला जी आए दीवान विच साहब जी शब्द नाल गा गा के झूम रहे, और जिस वेले गुरु अंगद दे पातशाह दी अखां खुलदियां सन पाई बाले ते जा पैंदियां। साहब जी ने थोड़ी देर बाद अपने कोल बुलाया ते पुछया भाई कौन है, कित्थों आए हैं। पाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मेरा नाम पाई बाला है, और मैं सारी उम्र गुरु नानक पातशाह दे नाल रह के उन्हां दी सेवा कीती है। जदों गुरु अंगद दे पातशाह ने सुनिया भाई बाला उठ के खड़ो गए, हिरदे नाल ला लिया, आख्या तू बाला है मेरे गुरु नानक दा साथी। कोल बिठा लिया, आख्या सुना ना गुरु नानक दियां सिफतां, गुरु नानक दियां साखियां।
जिवें जिवें भाई बाला गुरु नानक दियां सिफतां साखियां गाउंदा है गुरु अंगद देव पातशाह दे नैन कटोरे वस रहे हन। जदों कोई प्रीतम दी अपने प्यारे दी गल सुनावे तां उहदी याद विच फिर अखां विचों नीर वह तुरदे हन। सा सगत बोलो श्री कुछ दिन भाई बाला उत्थे रहा ते साहब जी ने लिखारी दे के भाई बाले कोलों जन्म साखी लिखा ली गुरु नानक दी। एक दिन भाई बाले ने आख्या गुरु अंगद देव पातशाह नूं गरीब निवाज मेरे मन विच एक संसा है निवृत करो। साहब जी कहन लगे बोल भाई बालिया गुरु वल संसा रखना नहीं चाहिदा कदे क्योंकि जिन्हां दे हिरदे विच संसा रह जांदा है उन्हां दा हिरदा मैला हो जांदा है। संसा कढ अपना ता भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या के सारी उम्र गुरु नानक दी सेवा मैं कीती गुरु नानक पातशाह दे नाल मैं रहा ते जदों गुरता गद्दी देण दा समा आया ते आप नूं बिठा दिता गद्दी ते। गुरु अंगद देव पातशाह कहन लगे भाई बालिया तू गुरु नानक नूं की जान के सेवा कीती तू गुरु नानक नूं की जान के पूजिया। भाई बाला कहन लगा मैं गुरु नानक नूं पूर्ण संत जान के पूजिया। ता गुरु अंगद देव पातशाह कहन लगे भाई बालिया फिर गुरु नानक ने तेनू पूर्ण संत ही बना दिता। भाई बाला कहन लगा मैं तां गुरु नानक नूं संत जान के पूजिया ते तुसी की जान के सेवा कीती तुसी गुरु नानक नूं की जान के पूजिया। तां गुरु अंगद देव पातशाह दियां डुब डुब अखां भरियां आखिया मैं गुरु नानक नूं पार ब्रह्म परमेश्वर जान के पूजिया। भाई बाला भी रो पिया कहन लगा फिर गुरु नानक ने तुहानूं पार ब्रह्म परमेश्वर दा रूप ही कर दिता। सत संगत बोलो श्री सतगुरु नूं जेहा को कर जाने तेहा फल पावे सोई। गुरु नूं जेड़ा कोई जिस भावना दे नाल पूजदा है उतनियां को बख्शीशां गुरु नानक दे दर तों लै जांदा है। भाई भाई लैणा लै गया लै गया भाई लैणा और फिर गुरु अंगद देव बन बैठा जिदे हिरदे विच गुरु नानक दा निवास है। ते हुण गुरु अंगद देव पातशाह गुरु नानक नूं ही नानक नानक गाउंदे होए की आखदे।

आप गवाया हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा करन उदासी अंदर माया हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा गुर

ऐसा गुरु सिख जिसका जीवन सेवा सिमरन परोपकारी है, भाई साहब कहते हैं कि बेशक उसनू कह दियो जेडे जोड़े उसने पहरे हैं वह उतार देवे, पता नहीं किस चमड़े दे होंगे। आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिख नू पहना दो जिसका ऐसा जीवन है। गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला, शब्द सुरत सावधान है बिन गुर शब्द ना सुन ही बोला। जिथे गुरु की बाणी दी विचार होंदी है झट पहुंच के कान दे के सुनदा है, ते जिथे निंदिया चुगली हो रही है उथों कन्नी कतरा जांदा है, क्योंकि निंदिया चुगली सुनन नाल पुन सड़ जांदे हन। सत संगत विच बह के गुरु की बाणी सुनन नाल पुन वध जांदे हन। इसलिए गुरु के सिख दा ऐसा जीवन भाई साहब कहंदे हन, बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े ऐसे गुरसिख नूं।

प्रसन्न होए। भाई सहदे का प्यार वेख के हिरदे नाल आया, आख्या भाई दया सिंह देश नू मोरा एदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज़

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदा, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनू ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती, जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहिंदे ने हे प्रभु, ए संसार एक समुंदर है, ए समुंदर विच कहिंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहिंदे ने हे मालिक,

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देव

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिन्नां तिन्नां सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

अजय सरों में पीखे खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे ते सर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंत का